जावे। कहिंदा मुंडा नेक सुभा दा, नेक सुभा भी भूआ का दा, खांदा रोटी दे नाल गंडा, गंडा खाना नहीं कोई मंदा, पहला दारू ते फिर गंडा, एनू कौन कहूगा चंगा। दारू पीवे दुनिया सारी, ए कोई आदत नहीं है माड़ी, पर जो आदत जूए बाजी, कुड़ी किवें रहूगी राजी। असली आदत उसनू चोरी, चोरी उपरों सीना दोरी, चोरी करके खेडे जुआ, अगो

0: चल परा।
1: ओ तू चल,
0: ओ तू चल,
1: हट पर,
0: हट पर,
1: चल पर,
0: चल पर,
1: हट पर।
2: चमचे हद तारीफ दी ते चमचा नाम शैतान, फूक शिका के माड़े नू भी कर देंदे पलवान। भाजी किदा बनाउंदे ने वाह पलवान जी थोड़े डौले, अज तुसी ढा दियो कंधा कौले, बंद करा दियो गुंडा गर्दी, पालो तारा सिंह दी वर्दी, ऐसी यारा फूक शिकाई ले।

गोड़ी नाल इश्क मिठा, गोड़ी नाल इश्क मिठा, रब्बा लग ना किसे नू जावे, गोड़ी नाल इश्क मिठा, गोड़ी नाल इश्क मिठा।

0: समय रुका, फिर धीरे धीरे चलने लगा। मन का घाव धीरे धीरे भरने लगा। बाप की उंगली थाम के बच्चे चलने लगे, मां के बदले बाप की गोद में पलने लगे। साल महीने मौसम आने जाने लगे, शेर के बच्चे फिर से हंसने गाने लगे। बाकी कहानी कल, चलो अभी सो जाओ।
1: नहीं पापा, प्लीज अभी सुनाओ ना पापा, प्लीज अभी।
0: अच्छा बाबा, तो सुनो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह

सिदक सबर की लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वर्ग ला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, ऐथों तक आखिया कि तुहानूं पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ये। बड़ी कोशिश की थी इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान की।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौन वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे? आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे काकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा, ए नवाब साहब, सब दे बच्चे हमेशा सब ही हुंदे हैं, इन्हां दा मूंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विच चिण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विच चिणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले,

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नकनती लाए सिर्फ दो पौंडना। कान सलाने ना ही कपाउंड, छापा ते बंगानी कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4 8 9 3 5।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news, the been beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक enjoy कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

Welcome back after the classic flashback. Williams and Rise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

Welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big big big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. So stay tuned with me and I'll be right back and the next song is specially dedicated to you.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Sheffield Mela CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobajan Talwar, Roach Killer and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

वेलकम बैक आफ्टर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एंड देन दुनिया के भी किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड डाउनलोड द ऐप एंड ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

Welcome back after yet another beautiful classic flashback on your Sunrise Radio 103.2 FM. Right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. So I'll see you on the other side.

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

What a lovely song. क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: सारा माता है।
1: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramin Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Sheffield Miller CIC in association with Eventmaster International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramin Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Sheffield Miller CIC in association with Event Master International presents DeciFest Sheffield Miller 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Miller shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
3: Sony,

0: छड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

में खुले मैदान में हमारी तरह बैठे हैं अपनों के दरमियान में या गैरों के दरमियान में। सलाम नमस्ते सस्रियाकाल जी एनु वेलकम खुश आमदी कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब मैं हूं आपका अपना, बिल्कुल जनाब आप ही का अपना काशिफ। सनराइज रेडियो पे आप हमें सुनते हैं जनाब, पूरे 3 घंटे का एक साथ होता है, महफिल होती है, हम होते हैं, आप होते हैं, आप होते हैं, हम होते हैं, आपकी बातें होती हैं, हमारे दिल की बातें होती हैं, कुछ हमारी मस्तियां होती हैं, कुछ आपकी शरारतें होती हैं, कुछ अफसाने कुछ कहानियां, कुछ बहाने मुस्कुराहटों के, कुछ राज आपके कुछ हमारे दिल की बातें। जी हाँ जनाब, हवा पे बिखरती हुई ये आवाज आपके दिल के दरवाजे को खटखटाती रहेगी पूरे 3 घंटे। आप दरवाजा खोले ना खोले आपकी मर्जी, अब दरवाजा तो दिल का जो है ना वो हम तोड़ नहीं सकते हैं, आपसे दूर हो जाए आदत हो गई आपकी, ये आदत हम छोड़ नहीं पाते। और जनाब 100.6 FM और 103.2 FM पे आप हमें सुन रहे हैं वेस्ट यॉर्कशायर में DAB के जरिए, दुनिया भर में आप हमें सुनते हैं sunriseradio.fm के जरिए। आज थोड़ा तेजी से एनर्जेटिक ज्यादा हूं, मौसम जनाब आज कुछ बेईमान सा है। जब मौसम बेईमान होता है, लवी डवी सा होता है, तो फिर जनाब वैसे हम 3 कप कॉफी के पीते हैं शो पे आने से पहले तक, जब से हम उठते हैं जागते साथ ही, लेकिन जब मौसम होता है बरसात का, रिमझिम बारिश बरसती है, तो फिर दिल बेईमान होता है, इस बेईमान मौसम के संग संग एक आध कॉफी का कप एक्स्ट्रा चढ़ा लेते हैं हम। तो जनाब ये कैफीन जो है ना ये हमारे दिमाग को चढ़ गई है, टाइम लगेगा, ये कैफीन तो दिमाग से उतर जाएगी, आपकी मुलाकात का जो नशा है ये नहीं उतरता जनाब। पूरे 7 दिन हो गए हैं आपसे जुदा होने के बाद, दोबारा मुलाकात आज जो हो रही है, आपसे मिलते हैं तो मजा आता है, आपसे दूर जाते हैं तो इस कमबख्त जुदाई में भी, आपकी जुदाई में भी मजा आता है। आपको मजे आते हैं नहीं आते ना, अपने अपने दिल की बात होती है, जो दिल से दिल को लगाते हैं, दिल से दिल वालों को अपना बनाते हैं, तो फिर जनाब उनके मिलने में भी मजा होता है, उनकी जुदाई में भी मजा होता है, यानी जैसे हमें मजा आता है आपकी जुदाई में भी, आपसे मिलके भी। और जब बरसात होती है

0: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 2:18.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
5: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
6: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
5: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
6: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
7: Official media partner, Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: जी जनाब, मैं हूँ आपका अपना काशिफ और सनराइज रेडियो आप सुन रहे हैं। नंबर इसलिए नहीं बताया था, थोड़ी सी चीजें थी जिनको हमने मैनेज करना होता है शो के स्टार्ट में। तो अब जनाब, शो स्टार्ट कर दिया है हमने, चीज़ें मैनेज हो गई हैं, सारी तरतीब बिल्कुल जनाब। यहाँ पे एक हफ्ते के बाद आके तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमें तरतीब देने होते हैं, तो सब काम हो गए हैं। अब आप हैं, हम हैं, हम हैं, आप हैं। और जनाब, अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, अगर आपका दिल माने, आपके पास टाइम हो, आपका मासूम सा, जी हाँ, क्यूट म्यूट सा दिल, वो जो म्यूट म्यूट रखते हैं आप, उसको उसकी गिच्ची दबा के, उसकी संगी दबा के रखते हैं, और जनाब उस बेचारे की आप सुनते ही नहीं हैं, आज उसकी सुनिएगा। अगर वो कुछ कहे हमारे हक में, कोई कोई भी गवाही दे, आपका दिल अगर हमसे बात करने को चाहे तो ज़रूर बात कीजिएगा। आप अपने नाम के साथ कोई खूबसूरत सा गीत जोड़ के, हमारी मर्जी का, अपनी मर्जी का, हमको, सबको, खुद को सुनवा सकते हैं। लेकिन जनाब, बात वही है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप आराम से हमें सुनते रहें, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास, सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी जनाब, अगर आपका दिल माने तो, दिल चाहे तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं 01274306666। जी जनाब, 0174306666। ठीक हो गया, ये है आपका और हमारा राबता नंबर पूरे के पूरे 3 घंटे। जनाब अभी तो पहला आवर स्टार्ट हुआ है, बताइए कि जनाब आज के मौसम में आप कहाँ कहाँ, क्या क्या चंद चढ़ा रहे हैं, गुल खिला रहे हैं, खुद पागल हो गए हैं जनाब मेरी तरह इस मौसम के चक्कर में, बेईमान मौसम, या फिर किसी को पागल बना रहे हैं। हमें तो जनाब आपने बनाया है, क्या सुन लेना।

जनाब, अब आप बच जाएं सारे के सारे, ये मेरा चैलेंज है, आप बच जाएं मेरे से, क्योंकि मूड बन गया और मैं हर बार कहता हूं जैसे ही हमारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं शो में, जैसे ही आप में से कोई दोस्त बहन भाई अपने आते हैं और काशिफ की ये जो है ना, एक आपको एंटरटेन करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव, और एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जब आप फुली चार्ज कर देते हैं तब मैं ये कहता हूँ कि अब बच जाएं।

कमाल हो गया। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है मासूम सा दिल में, जब वो जनाब वो बच्चा अपनी शरारतों पे आता है और आपकी खुद की नहीं सुनता, आपके जो दिल के अंदर एक मासूम सा बच्चा जिसे आपने बेहोश किया हुआ होता है दुनिया के चक्करों में, जब वो आता है ना अपनी आई पे, तो फिर जस आती है जनाब, क्योंकि वो उसको कोई चक्कर कोई दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। जनाब मैं बात कर रहा हूँ आपको ये समझाने की, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ आपने सोचा हो और सेम टाइम पे आपको किसी ने कॉल की हो और उसको ना पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको ना पता हो वो क्या सोच रही हैं या रहा है, लेकिन दोनों की बात हो और दोनों एक दूसरे को बताएं कि जनाब सेम टाइम पे वो भी यही सोच रही हैं और आप भी यही सोच रहे हैं। ओ वाह वाह, ऐसा रोज रोज नहीं होता, सालों में एक आध बार होता है। जनाब हमारी एक बिल्कुल अभी इस बात का रब गवाह है कि टिकटॉक की हमारी एक फॉलोअर है, हमें टिकटॉक पे फॉलो करती है, उन्होंने जनाब आज पहली बार हमें अपनी आवाज़ सुनवाई और उन्होंने बात की हमारे साथ, और पहले उन्होंने गैरों की तरह बात की और फिर उन्होंने जब अपना तारफ करवाया तो जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की छत में बिल्कुल मेरे सर के ऊपर एक छोटा सा खड्डा सा बन गया, मेरा सर जाके उस छत में लगा। सच्ची आप पता नहीं क्यों ये बातें मेरी मानते नहीं है। जनाब आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अजरा आपकी बात कर रहा हूं, पहली बार आपकी आवाज सुनी। आप इतने टाइम से मुझे टिकटॉक पे फॉलो करती हैं और आप मेरी कोई वीडियो कुछ भी मिस नहीं करती हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई भी चीज आपने मिस की हो, मुझे सोशल मीडिया पे जहां कहीं भी हो, खासतौर पे टिकटॉक पे, वहां पे आपने मुझे फॉलो करना शुरू किया। आपकी आवाज सुनी, बात की, बड़ा अच्छा लगा। और जनाब खो इंसिडेंट ये है कि उन्होंने कहा कि जब मैं कॉल बंद करने लगा तो उन्होंने कहा काशिफ मेरा गाना तो सुन ले जो मैं फरमाइश करना चाहती हूँ, आज मेरे दिल में है एक गाना। तो मैंने कहा ओ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, कॉल डिस्कनेक्ट करते करते एकदम से मैंने थोड़ा सा ना एम्बेरस मैं हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो ये सोचेंगी कि मैं जल्दी में शायद जान छुड़ा रहा हूँ, या ऐसा कभी नहीं मैं किसी के साथ करता। मेरी कोशिश होती है जब आप टाइम निकालते हैं मुझे कॉल करते हैं तो मैं हर एक से अपने फैमिली मेंबर जैसे से बात होती है ना, तो बिल्कुल मैं तो इस साइड से आपको अपना फैमिली का मेंबर समझ के फ्रैंकली बिल्कुल उसी मोहब्बत से चाव से रब को गवाह रख के बात करता हूँ। गैरों की तरह कभी किसी से बात नहीं की जिसकी भी आज तक मुझसे बात हुई है। तो जनाब उन्होंने जब मुझे थोड़ा सा एम्बेरस किया, उन्होंने कहा काशिफ मेरा गाना तो सुन लो, आप तो खुदा हाफिज करने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप अब आराम से बोलें, गाना बताएं, मैं ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे पास वो गाना हुआ। तो उन्होंने कहा गाना है विजय पथ मूवी का, राह में उनसे मुलाकात हो गई, कुमार सानू जी की आवाज़। तो यकीन करें कि मैं शॉक्ड हो गया, मेरी बात उनसे पहली बार हुई और पहली बार जो गाना मैं नेक्स्ट लगाने वाला था, मेरे दिल में सॉन्ग था, वही गाना सेम टाइम आप भी सोच रही थी।

0: जी जनाब, हम आ गए हैं वापिस और हमें थोड़ा सा मसरूफ कर दिया आप ही ने। और जनाब ये सॉन्ग हम जरूर लगाएंगे आप सभी के लिए। और पहले बात करेंगे हम हलीमा की। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी यार, आज क्या चक्कर है? आप सभी जो है ना, जो टिकटॉक पे मुझे फॉलो करते हैं वो पहले आ रहे हैं और बाकी दोस्त जो है ना वो बाद में आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? सामिया हमारे साथ हैं जनाब, मिडल्सब्रो में। सामिया, आपके लिए भी यही गाना होगा। आप भी धीरे धीरे अपनी फरमाइशें बताती हैं। आप मोस्टली पाकिस्तानी सॉन्ग्स, जो पॉप सॉन्ग्स थे ना 90s और 2000 के दरमियान, वो आपके फेवरेट होते हैं। लेकिन मीन टाइम पहले बात करेंगे हलीमा की। हलीमा जनाब, बिल्कुल जनाब, जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं ना आपके, फैमिली की तरह लॉयल वाले वफादार, यानी कि जिनकी वफादारी की आप मिसालें दे सकते हैं, यानी कि टाइम पास वाला काम नहीं जनाब आपकी तरह। हाँ, जो आप अभी सुन रहे हैं हमें टाइम पास कर रहे हैं, नहीं जी नहीं। देखें कहाँ टिकटॉक और टिकटॉक से फॉलो करके यहाँ पे स्टूडियो में बाकायदा कॉल करना और मुझे बताया कि वो कितने टाइम से हमें सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं। जनाब ये रब का करम होता है कि किसी के दिल में, किसी की दुआओं में इस तरह की जगह बने आपके लिए, इस तरह का मकाम हो। ये रब ही दिलों में ख्याल डालता है। बंदे की नीयत हो सकती है, तो नीयत तो रब जानता है, दिलों के हाल रब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम किसी की ज़ाहरी बातों को देख के हम जज कर लेते हैं कि जनाब ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है, वैसी है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे मॉडर्न लोगों को देखते हैं। मेरे साथ ऐसा पर्सनली हो चुका है कि मैंने देखा कि किसी की लुक बड़ी पोश और बड़ी ही मॉडर्न और बड़ा मेकअप और बड़ा कुछ जनाब, मॉडर्न स्टाइल, लेकिन जनाब इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा दिल का मोमन या फ़कीर नहीं है। और जब मैंने उनको जाना, पर करीब से देखा उनका लाइफ स्टाइल, उनकी सोच को जानने की कोशिश की, तो जनाब वो दिल के बड़े ही अल्लाह लोग बंदे निकले। तो जनाब ज़ाहरी बातों पे, ज़ाहरी हुलिये पे ना जाया करें, ये बात याद रखा करें। हलीमा, आपने गाना बताया जीत मूवी का, ठीक है, ये मैंने लिख लिया जनाब। जीत मूवी का गाना आपके लिए प्ले करूंगा मैं। थोड़ा सा आपसे बात करते करते मुझे देर हो गई, वरना मैं वही गाना प्ले करता पहले। अच्छा, क्या ख्याल है अभी, मतलब माइक हमारे सामने है, कुर्सी पे हम बैठे हैं, तो हमारी मर्जी होगी ना भाई साहब कि हमने क्या लगाना है क्या नहीं। नहीं जनाब, ये गाना बाद में, पहले हम हलीमा के लिए गाना लगाएंगे। तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, हलीमा काशिफ को अपनी दुआओं में रखना, जैसे काशिफ आप सबको। जनाब अजरा जी, आपके लिए भी यही गाना होगा दोबारा से एक बार फिर। और आयशा हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना होगा। और जो और कॉलर्स मजीद अब आते जा रहे हैं 01274306666 के जरिए, उन सबके नाम भी जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं फोन लाइंस पे, जनाब आपके इंतज़ार का शुक्रिया, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का शुक्रिया, आपके खलूस का शुक्रिया, जो आपके दिल में जो लेके आप आते हैं, कॉल करते हैं, टाइम निकालते हैं, अपनाइयत का एहसास आप दिलाते हैं, इसका अजर आपको रब ही दे। जनाब एक कॉलर हमारे साथ आई, उन्होंने कहा नाम नहीं बताना चाहती मैं आपको। मैंने कहा ये मुझसे डरती हैं, लोगों से डरती हैं, या किसी और का डर है? कहती हैं जनाब मैं लोगों से डरती हूँ। अच्छा, जब भी मुझे कोई ये कहता है ना कि मैं लोगों से डरती हूँ या डरता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि डर तो सिर्फ रब का होना चाहिए। बहरहाल नाम आपकी एक पर्सनल चॉइस है, आपने नहीं बताया, मेरे सर आंखों पे आपका इज्जत, आपका एहतराम, आपकी चॉइस जनाब हमेशा। आपने कहा मेहमान आने वाले हैं आपके घर पे, आप खुश भी हैं और थोड़ी उदास भी हैं। मैंने कहा क्यों, मेहमान तो रहमत होते हैं घर पे। कहती है खुश इसलिए हूँ कि वो 3 बजे के करीब आने वाले हैं और मैं 3 के बाद या 3:15 के बाद डेफिनेटली आपको सुन नहीं पाऊंगी, और मैं पूरा वीक आपका इंतज़ार करती हूँ। तो मैंने आपको कॉल करनी नहीं थी कभी भी लाइफ में, तो मैंने कहा आज क्यों कॉल की, ये बताने के लिए। यकीन माने वो बहुत हंसी। मैंने कहा ये बताने के लिए कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, या ये बताने के लिए आपने कि करेले गोश्त बनाए हैं, उन्होंने करेले गोश्त भी बनाए, ये बात भी हुई। तो कहती है, नहीं काशिफ, करेले गोश्त तो हम बनाते रहते हैं, मेहमान भी आते रहते हैं, लेकिन कॉल सिर्फ ये बताने के लिए की कि मैं आपका शो हमेशा पूरा सुनती हूँ शुरू से लेके आखिर तक, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिल में बेचैनी थी कि हो सकता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मेहमान आएंगे खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ी उदास थी कि आपको सुन नहीं पाऊँगी, आदत सी हो गई यार संडे आपको सुनने की, तो इसलिए मैंने सोचा शायद आपसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा सब्र आ जाएगा। ओ सो क्यूट, बड़ी बात है आपको अरे वाह, मेरे दिल की चीखें निकल गई आपकी ये बात सुने के, और मेरी कुर्सी की चीखें भी निकल रही हैं, आपको ने सुनी होंगी। जनाब बात ये है, आपको सब्र आएगा हमसे बात करने के बाद, ये तो मुझे पता नहीं, मुझे ज़रूर करार आ गया आपकी ये बेसब्री और ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन सी जो सच्चाई के साथ आपने बात की कि आपसे कॉल कभी ना, बात कभी ना होती, लेकिन आज इस वजह से बात कर रही हूँ क्योंकि आपको मैं पहली बार, हमेशा से सुनती हूँ, आज मैं सुन नहीं पाऊँगी तो मैं कहीं वो जो है ना वो बेचैन हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा शायद आपसे बात करने के बाद मुझे सब्र आ जाए। सो क्यूट, सो स्वीट, आपने कहा 3:15 तक आप हमें सुन रही हैं, तो 3:15 बजे 3:15 तक जितने भी गाने होंगे वो मैं आपकी इस मासूमियत, आपकी इस सच्चाई को और आपको दिलो दिमाग में रख के प्ले करूंगा, चाहे वो हलीमा का फेवरेट गाना हो, जीत मूवी से तू धरती पे जहां, तू धरती पे जहां भी रहे, चाहे मेहमानों के साथ रहे या मेजबानों के साथ, ये गाना आपके लिए भी होगा, हलीमा के साथ साथ उसका फेवरेट गीत और आपके लिए भी। अच्छा, आपने जाते जाते हमारे लिए जो भी कहा वो उसके लिए तारीफ रब की, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद बड़ी अच्छी हैं, आपको पता ही नहीं, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप बहुत स्वीट हैं दिल की, ऐसे ही रहिएगा, बनावट ना लाइएगा, दुनिया में हर तरफ आजकल 90% लोग बनावट से जी रहे हैं, पता नहीं क्यों, और बड़े कम 10% लोग हैं जो आप जैसे हैं जेन्युइन, ऐसे ही रहिएगा, बदलिएगा ना, आइंदा अगर कभी मेहमान आए, आने वाले हुए तो ज़रूर हमसे बात कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं, आप हमें सुनती रहती हैं, ये हमें पता लग गया, यही काफ़ी है हमारे लिए। चलिए जनाब, गाना सुनेंगे तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे, जनाब आप सबके लिए भी होगा, आप जहाँ कहीं भी धरती पे रहें सनराइज रेडियो को सुनते रहें अपने काशिफ के संग संग।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जनाब 2:50 हो गए हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ, उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
5: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you

जी जनाब, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और जनाब, टेक्निकल आजकल दौर ऐसा आ गया है, क्या करें, ऐसे लगता है हम कोई जहाज उड़ा रहे हैं। इतने सारे बटन होते हैं, इतने सारे वो सारा वो ऑपरेट करना होता है, नालों नाल एक अद्धा भी बटन दबाना या ना दबाना तुसी भूल जाओ तो क्यामत हो जाती है जनाब। अच्छा जनाब, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त काशिफ, प्यार से कहते हैं मुझे आपका अपना काशिफ।

और जनाब आपको बताएं, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर तो रहे ही रहे, लेकिन कुछ अपने भी रहे, कुछ पराए भी रहे जिन्होंने नाम नहीं बताए, लेकिन बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई है। अब पहले ये मोहब्बत का उधार, कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची होती है। जो दौर चल रहा है मुझे तो लगता है मोहब्बत ही कैंची होती है। लोग मोहब्बत का नाम लेके बड़ी जगह ये कैंची चलाते हैं, बड़े दिलों को काटते हैं, बड़े जज्बात को काटते हैं, बहुत सारे एहसास को काटते हैं, बहुत सारे वादों को करने के बाद, बहुत सारी कस्में उठाने के बाद, उनको निभाने के लिए उन रिश्तों से, जी हाँ उन रिश्तों को कैंची से, मोहब्बत की कैंची से काटते हैं। लेकिन जनाब एक रिश्ता दोस्ती का, दाल से दयानदार, वाव से वफादार, सीन से सच्चा, ते से तावेदार, दोस्ती का रिश्ता ऐसा जिसमें अभी भी दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ किसी हद तक यकीन कर लिया जाए। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने जनाब आप साथ निभाने के लिए दोस्ती की, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको अपना बनाने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए, बड़ी बात होती है जनाब साथ बनना और साथ निभाना, और वो भी दोस्ती का रिश्ता। जनाब जब दोस्ती का लफ्ज आता है तो बहुत सारे अपनों के नाम याद आते हैं जो इस वक्त भी मेरे चारों तरफ मौजूद हैं, मेरे साथ साथ हैं, अच्छा हमेशा साथ रहते हैं, पता है। अच्छा वो मुझे अक्सर कहते हैं हमारा नाम बेशक आप ना लें, हमें नाम की फिक्र नहीं, आपके साथ की फिक्र है। तुम्हें बहुत ही लकी, और अगर आप भी ऐसे प्यारे हैं, रब ने आपको भी इस नेमत से दोस्ती की नवाजा है कि कोई आपको, कहते हैं दोस्त एक भी हो सच्चा हो तो इंसान गरीब नहीं होता, और लाखों हजारों की भीड़ भी आपके गिर्द मौजूद हो लेकिन कोई साथ निभाने वाला ना हो, कोई दिल से आपका दोस्त ना हो, तो आपसे ज्यादा उस भीड़ में, आपसे ज्यादा जो भीड़ आपके चारों तरफ है, उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। तो साहब नहीं, साहब नहीं कहा हमने, साहब बोला, निक नेम कर देते हैं ना, साबी, ठीक है ना जी, साबी की बात हो रही है। साहब हमें सुन रही हैं और जनाब कहती हैं पूरा नहीं सुन पाई, कहीं चली गई थी, अभी वापस आई हूँ और सुन रही हूँ, और अभी आपके साथ साथ ही हूँ। ठीक हो गया जी, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए भी, आप साथ निभाती हैं हमेशा, दुनिया में किसी भी कोने में जाती हैं साहब, हॉलीडेज पे जाती हैं, वापस यूके आती हैं, किसी भी कोने में जाती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं बोल पाती हैं, कभी कोशिश भी की होगी उन्होंने लेकिन नहीं बुला पाती हैं, हमें पता है क्योंकि हम नहीं बुला पाते ना उनको, इसलिए जनाब ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करते हैं। और इसके अलावा राणा नवीद साहिब हैं स्वीडन में, जनाब दोस्ती का सॉन्ग हो और उनका जिक्र ना आए, जनाब दोस्त हैं हमारे बड़े प्यारे से, हमें दोस्त कहते हैं, याद करते हैं, तो लगता है वो भी दोस्ती निभाना जानते हैं। कॉल की उन्होंने, प्यार मोहब्बत की बातें की और बड़ा अच्छा लगा आपसे गपशप करके, बहुत खूब। आपकी हॉलीडेज का आज आखिरी दिन है जो आपने हमारे साथ गुजारना है, तो ये गीत जनाब आपकी हॉलीडेज के खत्म होने की खुशी में, नहीं गम में, सॉरी गम या खुशी, हॉलीडेज पे जब गा रहा हूं तो घर के काम करने पड़ते हैं, और जब हॉलीडेज खत्म होती हैं तो खुशी के मारे इंसान पागल हो जाता है कि जान छूटी लाखों पाए। कल से काम पे जाएंगे, आराम से वापिस आएंगे काम से, और नखरे दिखाएंगे कि जनाब हम तो बड़ा काम करके आए हैं, है ना। तो इसलिए जनाब आप, मुझे नहीं पता कि आपकी ये बात नहीं आपसे जान पाए कि आप खुश हैं या गम में हैं, आखिरी दिन है हॉलीडेज का। एनीवेज गाना आपके लिए दोस्ती का, अच्छा आयशा दोस्ती का गाना हो और आयशा का नाम ना लें। आयशा कहती हैं काशिफ मेरे दोस्त बहुत हैं, दुश्मन एक ही है। देख लें हमें क्या क्या, सीना हमारा बिल्कुल ठीक है, सीने के अंदर जो दिल है वो छलनी कर दिया आपने सबने मिलके। तो आयशा कहती है दोस्त बड़े हैं काशिफ लेकिन मेरा दुश्मन एक ही है। मैंने कहा कौन है वो,
कहती हैं वो है जो संडे को आता है और अपनी बातों से उफ क्या क्या बातें आप बोलते हैं, कहती है अपनी बातों से डस लेता है। वाला वाला वाला कुवत है ला विला। सच्ची आयशा जी ये बात आपने करनी थी और ये मैं तो दिल में नहीं रखता हूँ, मैं तो सारी बातें करूँगा जनाब, जो है जो जो आप मेरी शान में फरमाते हैं वो मैं सबको बताऊँगा कि हमें किस किस तरह की आपके जज्बात हैं, आपके एहसास हैं, क्या आपके ख्यालात हैं हमारे बारे में, निशाने पर रखते हैं आप किस किस तरह से हमको देख लें। ये दुआएं हैं कोई माँ बाप की और आप में से किसी की हमारे काम आ रही हैं, वरना आप कसर नहीं छोड़ती हैं। अच्छा जी ठीक है जनाब, दोस्ती का गाना आपके लिए भी, बेशक आप दुश्मनों में रखें सरे फहरस्त हमको चले ये तो वक्त मेरा अक्सर ये मेरा जाती कॉल है, ये मेरी जाती एक एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनों को, मैं कहता हूँ वक्त बताता है आपको, लोगों की बातों में ना आया करें, वक्त दिया करें रिश्तों को, वक्त बताता है आपको कि कौन क्या है आपके साथ।

हलीमा आपके लिए भी, सामिया आपके लिए भी, और जिनके घर मेहमान आ चुके हैं, करेले गोश्त बना लिए हैं या भी आने ही वाले हैं दोस्त, उन्होंने नाम नहीं बताया, ये गाना आपके लिए भी।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं। टाइम हो चुका है 3:16।
2: सनराइज रेडियो, ट्रेंड सेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग, वी लीड अदर्स फॉलो।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274488935।
1: जी आजरा जी, तुसा नाल गल करी के बड़ा चंगा लगा। ते तुसा आने हो भी, मैं पूछी किंदा गलती होएगी माड़े कोलू। मैं है भी वीक के जिया गुजरिया ने आने बहु गर्मी है ते बर्दाश्त नहीं होनी पी गर्मी। मैं है आज भी गर्मी है, आज ते एडा सोना मौसम है आने नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है ते हद तो ज्यादा गर्मी है ते मी गर्मी बिल्कुल चंगी नहीं लगनी। मैं फिर के चंगा लगना तुसा की आने के खाली तू की बुझना चंगा लगना तुरा शो सुननी आ ते फिर गर्मी आले पासों थोड़ा ध्यान कटी जाना। ते बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा बहुत सारिया दुआवां देने हो हमेशा आवने हो ते तुसा नाल गल करी के ते माड़ा भी दिन बनी जाना। बाकी सारिया नाल गल करी के मिकी नहीं पता क्या बनना, कुछ ना कुछ बनना उन्हां नाल भी गल करी ते लेकिन तुसा नाल गल करी ते माड़ा संडे जरा ना उद्यार माड़ी खरी हुई जानी है। पर आज इतनी गर्मी को नहीं कोई दुआ कर सा भी अगर गर्मी थोड़ी और घट पवे तुसा मारे तो तुसा ना बहुत शुक्रिया। तुसा की गल करी के चंगा लगना तो तुसा की दसा मैं मिगी तुसा ना गल करी के बहुत ज्यादा चंगा लगना। और जनाब हमारे साथ एक कॉलर और भी नहीं। अच्छा आज मुझे लग रहा है बड़े अरसे के बाद ऐसी अभी अभी वो है ना एक एहसास एक फीलिंग सी आई है कि मुझे लगता है जैसे आज आपने तहिया किया हुआ है मुझे स्पॉइल करने का। वो होता है ना कभी अपने घर के किसी दोस्त को या अपने करीबी को अपने भाई को अपनी बहन को अपने बड़े को छोटे को कभी भी फैमिली में आप किसी को स्पॉइल करने का सोचते हैं। ऐसे मेरी बर्थडे भी नहीं है लेकिन आप सारों की जो बातें हैं ना आज, पहले मुझे शक था अब मुझे यकीन हो गया है जब से मैं स्टूडियो में आया हूँ। आज पता लग रहा है आप मुझे स्पॉइल करने के चक्कर में हैं। और इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कैसे कर लेते हैं मुझे भी सिखाएं ना। कौन है आपकी उस्तानी या उस्ताद टीचर आपका कौन है जो इतनी प्यारी बातें आप सब कर लेते हैं। जनाब एक कॉलर हमारे साथ एक और रही हाजरा जी के बाद, उन्होंने कहा कि तो गलतियां बड़ी होती हैं। मैं नाम पूछता हूँ तो आज जो मोस्टली कॉलर्स आ रहे हैं या आ रही हैं जनाब वो कहते हैं कि नाम नहीं बताना। इन्होंने भी कहा जी नाम नहीं बताऊंगी। मैंने कहा नाम बताएं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप काम बताएं। कहती हैं गाना जो भी आप लगाते हैं सारे अच्छे लगते हैं, आपको सिर्फ बताने के लिए कॉल की है कि हम आपको बड़े अरसे से सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं और आपको सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक हो गया जनाब, ये बताया आपने। और एक आध और काम की बात भी की आपने, वो भी हमें बड़ी अच्छी लगी। लेकिन मीन टाइम होले होले हमें पता लगता जा रहा है कि जनाब हम कंधों के साथ दीवारों से बातें नहीं करते हैं। होले होले से इस राज से पर्दा उठ रहा है

जी जनाब, होले होले हो जाएगा प्यार आपको, अगर नहीं हुआ अभी तक तो, और मुझे तो हो चुका है प्यार होले होले इतने सालों से आप सबसे। आपको पता आजकल में लग रहा है, लेकिन मैं ये हैरान हूं कि आपको इतनी देर से कैसे पता लगा कि काशिफ को आपसे प्यार है, जिसकी वजह से हम जनाब सात समुंदर पार करके सारे कामों को छोड़ छाड़ के हीले बहाने बना के सारे अपने काम धंधे आर पार करके आपके पास होते हैं यहाँ पे जनाब, आपका अपना काशिफ यहाँ पे आपके लिए। अच्छा जनाब, आज चौधरी नूर हुसैन जी कहीं पे आवारा गर्दी कर रहे हैं, हमने उनको बोला कि संडे आप आराम क्यों नहीं करते हैं, घर पे क्यों नहीं रहते हैं, तो कहते हैं जनाब आपकी याद हमें सताती है, हम रह नहीं पाते हैं, तो फिर आपको सुनने के लिए आते हैं बाहर, घर से बाहर गाड़ी में वॉल्यूम फुल करके हम आपको सुनते हैं। मैंने कहा हमने भी आपको अपने दिल के पिंजरे में कैद किया हुआ है, कर लें जाके जिसको शिकायत करनी है रपट करा दें, FIR कटवा दें, हम आपकी जमानत नहीं करने वाले हैं। अभी मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि मुस कर रहे हैं, और जनाब फटीक डाली उन्होंने कभी फरमाइश नहीं की, आज पता नहीं उनको उनकी सुई क्यों अटक गई। यार हमारा ऊपर से चौधरी, और चौधरी की जब सुई अटक जाए तो क्या करें। गाना ये मैंने हजार बार लगाया अपने शो में, लेकिन उनको आज सुनना है गाना जनाब सात समंदर पार। पता नहीं खुद जाना है या किसी को सात समंदर पार से यहाँ लाना है, या कोई भाग के उनसे जान छुड़ा के सात समंदर पार गया हुआ है, ये बात उनके दिल को लगी है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट मेरे कानों में अभी सरगोशी बन के आ रही है। बारह जनाब चलते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं बिना टिकट के, आजकल टिकट बड़े महंगे हुए हैं, हॉलीडे का सीजन है, फ्री में आपको सात समुंदर पार लेके चलते हैं, क्या याद करेंगे, काशिफ के साथ रहेंगे तो मौजे करेंगे, क्या याद करेंगे, सात समुंदर पार। लेकिन वापस आएंगे अभी कुछ ही मिनटों में, सेकंड्स में, चक्कर लगा के यूं गए और यूं आए।

0: साहब हमारे साथ वही कॉलर दोबारा ही कहती है मेहमान कुछ लेट हो गए अभी भी सुन रही हूँ आपको बताने के लिए कॉल की दोबारा से आप बार बार कॉल कर रही हैं रब खैर करे आपको आदत ना हो जाए कहीं हमसे बात करने की हमें फिक्र आपकी हो गई और जनाब मैंने आपसे पूछा कि जब मेहमान चले जाते थे तो बचपन में याद है वो जो पकौड़ों की प्लेट के लिए जंग होती थी जो पकौड़े पकौड़े मेहमान बचा के चले जाते थे तो याद है वो जो जंग होती थी बिस्कुटों की प्लेट पे सब जो बहन भाई सिबलिंग्स हम जंप लगाते थे जैसे ही मेहमान दरवाजे से बाहर होते थे तो वो पकौड़ों की प्लेट और वो बिस्कुटों की प्लेट पे वो जो एक जंग छिड़ जाती थी वो आपके घर छिड़ती थी या नहीं ये बताएं मुझे अगर आपकी तरफ भी ये होता था तो फिर इसका मतलब है कि हम सब एक ही हैं अच्छा जी कॉलर हमारे साथ रहे शफीक भाई ब्रेक के बाद आपका गाना जब लगाऊंगा तो फिर दोबारा आपका नाम लूंगा और फिर ठीक ठाक तरीके से लूंगा जो गपशप आपने हमारे साथ की है वो आपने हमें बड़ा हंसाया और हमने भी कोशिश की कि वारी मुका दे आपको भी हंसाएं बहुत हंसती हंसती एक कॉल थी जनाब फुल ऑफ लाफ्टर और बड़े ही आप शुगली बंदे हैं और बताते हैं जनाब क्या शुगली बातें हुई मीन टाइम जो बाकी कॉलर्स हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके साथ
1: Sunrise Radio Trendsetters in Asian Broadcasting We lead others follow
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Sheffield Mellor CIC in association with Eventmaster International presents DesiFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August 2026 from 12 till 8 p.m. for the biggest South Asian festival in South Yorkshire. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Meet Sandu, Summer Blake, Sasovan Sarkar, Dolls Royce, Roma Dance, and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there. Hosted by Sunrise Radio's Amit Soda. Radio partner, Sunrise Radio.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जी जनाब कॉलर हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे सोनिया हमारे साथ फोन लाइन पे हैं उनसे गपशप होती रहेगी बिल्कुल ऑफ एयर कॉल्स होती हैं सारी कोई भी ऑन एयर कॉल नहीं होती है जनाब बाकी कॉलर्स जिनको जिनकी कॉल मिली लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाई वो उनके लिए भी यही गीत होगा और जनाब शफीक भाई की बात हो रही थी शफीक भाई ने कॉल की कहते हैं काशिफ जी तुसा नो गुड हो मैं की हां जी क्या होया अरे ना कसम है तुसा नो गुड हो बहु मिकी तुसा ना नाराजगी है शिकवा है गिला है मैं शफीक भाई होया क्या है अरे जनाब मैं 7 वीक होई गई तुसा की कॉल करना पिया यो गल है रब गवाह जनाब यो गल हुई है शफीक भाई ने ते मारी हाले तो शुरू हुई ना कन्वर्सेशन अगे तो बुझो ना अरे कि 7 वीक होई गई मैं कॉल करना पिया तो कसम कॉल नहीं होनी पी तक कोई ना पूछो कि मिगी कितनी बेसब्री बेचैनी तो मरा हाल कहवै कोई हाल नहीं फिर असा उन्ना की जवाब दिता मैं हया शफीक भाई तुसनी आवाज इतनी डोन डोन सी जदों तुसा कॉल शुरू की थोड़ी देर कॉल पर मारे ना गल की नहीं तो आवाज च एनर्जी तो करंट आई गया तो इस 7 वीक इसे तरह मारी जुदाई चुसा बिल्कुल तुसनी आवाज डल बोरिंग परेशानी तो रंग पीला पीला होया उसी तो घर भी तो बाहर भी सारे शक करने उसे वे किसनी जुदाई च अपना यह हाल बनाई किंदा ये मजनू किया बनी गया तो शफीक भाई तुसनी आवाज जो तुसा कॉल शुरू की सी ना तो तुसनी आवाज तुसनी गल्ला नी सच्चाई तो गवाही देनी पी सी कि तुसनी गल्ला भी जरा गुस्सा शिकवा ते जरी शिकायत सी ना कसमे ओ मिकी बिल्कुल सही करनी सी मैं बुझना प्यासा आई हैव फेल्ट इट ऑनेस्टली कंप्लीटली आई कैन एग्री विद दैट क्योंकि जब आप किसी से बात करना चाहते हैं और बात नहीं होती है कोई भी हो मेरी तरह पावे कोई अकीर फकीर सा हो ऐवें ही दीवाना सा पागल सा कुछ चल्ला सा हो लेकिन आपकी जब सुई अटक जाती है ना किसी से बात करने के लिए तो फिर आपको करनी होती है हर कोई मेरी तरह सब्र वाला तो नहीं होता ना कुछ लोग बेसब्रे भी होते हैं अब मेरी आपके साथ सात दिन बात नहीं होती है तो मैं तो सब्र कर लेता हूँ ना दिल पे पत्थर रख लेता हूँ क्योंकि मेरा दिल पागल है ना शफीक भाई का दिल भी पागल था हमारे लिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे गाना सुनना है यही गाना सुनना है मेरा दिल भी कितना पागल है जब गाने मैंने कुछ कुछ कुछ कुछ प्लान किए हुए हैं लेकिन अब आप सब आते जाते हैं जो जो आपकी मन मर्जी है उसके मुताबिक ही शो चल रहा है आज तो कम्प्लीटली वैसे 90% आपकी मर्जी होती है बाकी 10% मुझे मौका मिलता है अपने गीत लगाने का लेकिन आज 110% सब आप ही आप हैं अच्छा शफीक भाई खाली आपका दिल पागल नहीं है कसम अच्छा दिल पागल हो तो बंदा चल जाता है जमाने में ऐसे ना बात बनी रहती है बंदे का कि कहने ने ओला बनिया रहता है पर्दा पड़ा रहता है अगर आपका दिल पागल हो और साथ में आप खुद भी पागल हो थोड़े बहुत समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं आपको मेरी बातों से लगता तो होगा ना कि मेरा दिल ही पागल नहीं आपके लिए मैं खुद भी पागल हूं आपके लिए इसीलिए तो आता हूं ना पूछे यही गवाही काफी है जनाब आपके लिए और फिर मैं अपने दिल पागल पे पागल दिल पे ना पत्थर रखता हूं पता है सात दिन के लिए आपकी जुदाई में फिर नहीं ना सब्र नहीं आता मुझे फिर वो जो मैं अपने दिल के ऊपर पागल दिल के ऊपर पत्थर रखता हूं ना इमेजिन करें उसके ऊपर एक और पत्थर रखता हूं दिल पे पत्थर फिर उसके ऊपर पत्थर फिर उसके ऊपर एक और पत्थर हाय अब बताएं मेरा दिल आपके लिए पागल है या मैं पागल हूं आपके लिए कोई मुझसे पहले आपके लिए इतना पागल हुआ है नहीं ना चले आप सुने और मैं आपके लिए क्या सोचता हूं सुनिए

0: जी जनाब, आप सुन रहे थे मेरा दिल भी कितना पागल है। मुझे तो कोई शक नहीं इस बारे में, आपको जो शक थे वो निकल गए होंगे। अच्छा जनाब, और हमारा शक निकला। तबस्सम हमें सुन रही है आज़ाद कश्मीर में, बिल्कुल जनाब एबटाबाद मुजफ्फराबाद के करीब कहीं वो हमें सुनती हैं, और उन्होंने कहा दुआ करें। मैंने कहा क्या दुआ करवानी है हमसे? बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, बोले कहती हैं दुआ करें हमारा इंटरनेट जो है ना वो फिर ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा क्या हुआ आपके इंटरनेट को? कहती हैं बड़ी मुश्किल से पता नहीं वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था, तो वो बिल्कुल बहाल हुआ है और हम आपको सुन पा रहे हैं। हमेशा से सुनते हैं और काफ़ी दिनों से नहीं सुन पा रही थी, तो बहुत मिस किया आपको, लेकिन अभी आपको सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस आप दुआ करें कि फिर से हमारे इंटरनेट को नजर ना लग जाए, ये ना हो कि फिर दोबारा हम आपको सुन ना पाए। ठीक है जनाब, दुआ करते हैं कि जनाब आपका कुछ भी इंटरनेट नहीं, कोई भी चीज आपकी डिस्कनेक्ट ना हो, आप इसी तरह खुश खुरम रहे, चाहे हमें सुनने के बाद खुश होती हैं या वैसे भी, हम तो नाचीज हैं, हकीर फकीर हैं, आप ही एक हमें सुन के खुश होती हैं, बाकी तो जनाब किसी ने कभी बताया ही नहीं कि वो भी हमें सुन के खुश होते हैं या हम ही पागल हैं। हमारा ही दिल पागल है जो आपकी मौजूदगी के एहसास से हमें खुश होता रहता है। चले आप जिए दुनिया के रंगों में रंगीन होके, ये दुआ है हमारी। अपने जब आपके सुखी होते हैं, खुश होते हैं ना, आपको एक ठंडी हवा उनकी तरफ से, एक इत्मीनान का एहसास जो मिलता है ना, तो फिर आप बहुत सारी कुर्बानियां जुदाइयां सह जाते हैं। आपके अपने खुश होने चाहिए जहां भी हो, समझ रहे हैं ना, बस आप खुश रहें जहां कहीं भी आप हैं। सुनते तो आप हमें हैं, ये तो हमें पता है, चोरी चोरी सुनते हैं, बेबस होके सुनते हैं, जैसे भी मैनेज करके सुनते हैं, सुनते तो हैं, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। बाकी जनाब आयशा जी हमारे साथ दोबारा आए हैं, वो बड़ास निकालेंगी। उन्होंने क्योंकि मुझे कहा था, आपको बताया नहीं, मैंने सब कुछ तो नहीं बताता आपको, हाथ पांव तो नहीं कटवाता आपसे, आपका क्या भरोसा, आप मेरी बातें पता नहीं किस किस को जाके आगे बता दें, सारी बातें आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपको बदहजमी हो जाएगी, आपके पेट में शायद हमारी बातें पचेंगी नहीं, इतनी सारी बातें। तो मैं एक दो बातें शेयर करता हूँ, ज़्यादा बातें जब मैं आपका हाजमा चेक कर लूँगा ना, कि आपका हाजमा बिल्कुल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपके पेट में मरोड़ नहीं उठते हैं, तो फिर मैं दो चार नहीं बल्कि ज़्यादा राज अपने आपके साथ शेयर किया करूँगा। अनीजे दाऊद भाई भी हमारे साथ हैं, और वो भी जनाब, उनकी भी मोहब्बत है, आयशा जी भी साथ हैं, उनकी मोहब्बत नहीं, आयशा जी की दुश्मनी है मेरे साथ, कोई पता नहीं उनकी है, मेरी तरफ से कोई नहीं है, पता नहीं क्यों हमें खाम खा उन्होंने दुश्मनी बना ली है मेरे साथ। कभी कभी आपको कोई, एक मिनट जी मुझे पानी का कुट लगाने दे। ये आयशा जी आपका डर है, जो आपने दहशत अपनी मुझ मासूम काशिफ पे जमा रखी है, तो आपके खौफ से गला खुश्क हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, पानी के कुटने, पता नहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं पानी में, नहीं सादा पानी है भाई साहब, हमारा एक ही नशा है, कॉफी हमारा नशा है, ना हम सिगरेट पीते हैं, ना हम कोई बीड़ी पीते हैं, ना कोई और चीज़, कोई भी किसी की किसी भी किस्म का कोई रंगीन पानी हमें अच्छा लगता है, बस एक पानी सादा और कॉफ़ी का नशा है। कॉफ़ी मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है पिछले दिनों में कि भाई साहब कम कर दें, आपके जो निशानियां जाहिर हुई हैं ना ब्लड में, वो कॉफ़ी की वजह से वो ठीक नहीं है, आप कॉफ़ी कम करें। मैंने कहा भाई साहब कॉफ़ी कम नहीं करेंगे, और कुछ बोलें तो कम कर, रोटी कम कर देंगे, कॉफ़ी कम नहीं करेंगे। जनाब रोटी कम करने से डर नहीं लगता साहेब, कॉफी कम करने से डर लगता है, अपना अपना नशा होता है ना। अच्छा जनाब, अब हमने आपको बतानी है बात, पता किसकी? तबस्सम जी की बात। तो उनके लिए ये खूबसूरत सा गाना होगा, और आसम भाई हमारे ओल्डम में, उनके लिए ये गाना होगा खास तौर पे। जनाब हमें कहा गया है, वो गायब है, तस्वीर से गायब है, तो ये शिकवा हम तक पहुंचा है, शिकायत पहुंची है, तो उम्मीद है कि आसम भाई वापस ट्रैक पे आएंगे। नहीं आएंगे तो उनको पता है हमें ये हुनर भी आता है कि कैसे किसी को अपनी जगह पे लाया जाता है। हम ले आएंगे उनको वापस, वो हमें अच्छे से जानते हैं। अच्छा जनाब, सोनिया ने शिकवा किया, उन्होंने कहा काशिप जी आपने बचपन की बातें की कि बचपन में एक जंग छिड़ जाती थी, जब मेहमान उठ के जाते थे तो बचे हुए जो पकोड़े और बिस्किट और जो भी होता था उसके लिए हमारे बहन भाइयों में दोस्तों में वो एक जंग छिड़ जाती थी कि कौन खाएगा। कहती है मेरे घर में जंग नहीं होती थी। मैंने कहा क्यों? कहती है मैं इतनी अच्छी बच्ची होती थी ना बचपन में कि मुझे घर वाले खुद वो सारी प्लेट देते थे। प्लेट तो हमें भी देते थे बार के, पर वो जो छीन के खाने में मजा था ना, वो जो लड़ाई करके वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती थी ना, वो फीलिंग होती थी विनिंग की, वो फिर आपने उसका मजा आपने चखा ही नहीं उसका मजा। जिन दोस्तों ने मजा चखा है ना छीन के ऐसे जंग करके खाने का, तो वो समझ सकते हैं मेरा दर्द। बाकी जनाब हमें बर्मिंघम वालों ने पूछा कि जनाब आप हमसे पूछते हैं हर बार क्या पकाया क्या खाया, आज अपना भी तो बताया करें ना। चलें बता देते हैं, फिर मैं बताता हूं तो फिर आप बात को पता ना दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप कहते हैं पता नहीं ये शो मारता है, शो ऑफ करता है, दिखावा करता है। दाल रोटी खाता हूं, इसमें क्या शो ऑफ हुई? हर बंदा यहाँ पे यूके में फिश एंड चिप्स तो हर बंदा खाता है, इसमें क्या शो मारनी हो गई? तो मैंने आपको बताया कि आज मैं फिश खानी है, तो उन्होंने कहा कि कौन सी वाली फिश, तो मैंने उनको बताया कि वो वाली फिश खानी है। तो मैंने कहा मैं फिश जब खाता हूँ तो मैं इस तरह से खाता हूँ कि जब मैं थक जाता हूँ तो फिर मैं फिश खाना ख़त्म करता हूँ। जब फिश ख़त्म होती है उस वक़्त नहीं, ना ना ना, जब फिश खाते खाते खाते खाते आप थक जाए, थक के चूर हो जाए, तो फिर आपको खाना छोड़ना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं ना पोर्शन बना बना के डाइटिंग और कैलोरीज और कार्ब्स और पता नहीं क्या काउंट कर करके, और बाथरूम में वेट स्केल रखा हुआ, बाथरूम में जाते हुए भी पहले वेट स्केल पे चढ़े, बाथरूम से वेले होके निकलते हुए भी वेट स्केल पे जनाब अपना वेट चेक करें, और सुबह दोपहर शाम करें, सोने से पहले और जागने के बाद सुबह वेट स्केल पे जनाब जंप करें। ना भाई साहब, हम इतने पोश नहीं है, दिल हमारा पोश होगा पर हम हमारी हरकतें इतनी पोश नहीं है। मैंने बताया ना, सच में आप अगर हमारे बारे में जानना चाहती थी तो हमने बता दिया कि हमने क्या खाना पीना और हम किस तरह खाते पीते हैं, तो ये अपना अंदाज है। बनावट हमें आती नहीं है, बातें करना हमें आती नहीं है, ये तो आपको पता ही है। मीन टाइम जनाब जो बंदों को गानों का चस्का है वो कहते होंगे जनाब बातें ही बातें हैं, गाने कोई नहीं, तो उनके लिए गाना लगाते हैं। लेकिन पहले
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: सनराइज रेडियो की स्टूडियो की घड़ी बता रही है, टाइम हो चुका है 3:51। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद फ्लैशबैक में क्लासिक हिट ऑफ द आवर के साथ, जो होगा तबस्सुम आपके लिए, सोनिया आपके लिए, बर्मिंघम वालों आपके लिए, अनीजे दाऊद भाई आपके लिए, आयशा जी आपके लिए भी।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
5: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जिस रोज हम फिर से मिलेंगे उस रोज हम ये बातें करेंगे, तुझको ना मिलूं तो मर ही जाऊं। अब जनाब लास्ट आवर आ गया है, जुदाई आवर इसको मैं कहता हूं, जुदाई आपकी। आपसे जुदा होने से पहले हमें खाने लग पड़ती है, आपका नहीं पता। आपका दिल है या सीने में पत्थर है, आपको क्या महसूस होता है ये बताना अगर चाहें तो जरूर बताइएगा। किसी और ने भी बताया हमें जनाब कि उनको क्या महसूस होता है जुदाई में।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: टाइम हो चुका है जनाब जुदाई का, यानी 4:08 हो चुके हैं। आपसे जाने से पहले निहाले कि थे, नहीं जी और ना करो, इतनी जल्दी भी की है। इतनी छेती क्यों, इतनी कालियां क्यों पईयां ने तानू, साडे हालते वेखो ना, साडी भी सुनो ना, असी की कहने आ तानू। अनीजे दाऊद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपकी गोल का। और ब्रेक के बाद आप सबको वेलकम, जी आए नो खुशामदी जुदाई आवर में जनाब। जुदाइयां व छोड़े आपसे दूर जाने की गड़ी बस आ रही है, आपके आसपास है, मेरे आसपास है। और जनाब इसमें जुदाई के गाने कुछ होंगे लेकिन मजे के गाने होंगे, आपके दिल के तारों को छेड़ेंगे ये गीत, इनके बोल, इनका म्यूजिक, इन गीतों की शायरी आपसे छेड़छाड़ करेंगे, आपको सताएगी हमारी याद। अगर आपके सीने में दिल है पत्थर नहीं, फिर शर्त है ये है दिल होना चाहिए आपके सीने में, और अगर हमारी नियत में कुछ सच्चाई हुई तो ये गीत आपको तंग जरूर करेंगे हमारे जाने के बाद। जैसे आपका एहसास, आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका खलूस हमें तंग करता है जनाब। अच्छा जी, बातें तंग करने से हमें याद आया, कुछ कॉलर कॉल करते हैं उनके तंग करने में भी मजा होता है, एक प्यार होता है, एक अपनाइयत होती है। अच्छा कुछ कॉलर ऐसे होते हैं जिनमें से दुआ, क्या कहूं, कुछ कहने को होगा तो कहूंगा ना। आपको पता है कि काशिफ के हाथ में जनाब अगर एक नुक्ता दे दें तो वो खींच के लकीर बना देता है, आपने वो नुक्ता भी नहीं दिया। हाय, कोई तो मुझे समझा, पता लग गया मुझे, दुआ आप मुझे समझ गई हैं, ये मुझे समझ आ गई आपको। जी जनाब, मैं हूँ आपका अपना काशिफ, सनराइज रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM और दुनिया भर में सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप मुझे सुन रहे थे और सुन रहे हैं। दुआ ने कॉल की और वो ऐसे ही आती है, और आती बाद में है, जाती पहले है, समझ गए ना। अभी दुआ हंस रही होंगी, लास्ट टाइम उनको हमारी बात अच्छी लगी तो उन्होंने दोबारा कॉल की थी, आज पता नहीं उनको बात अच्छी लगेगी या जहर लगेगी, पर उनकी बात, वो छोटी सी बात करती हैं हमें अच्छी लगती है, जो लंबी बात करते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो दुआ की बात ये थी कि जनाब काशिफ आपने जो गाना लगाया सैयारा मूवी का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बताने के लिए आपको कॉल की है मैंने, थैंक यू। बस, और मैं ऐसे बोलते बोलते रह गया। हेलो, उन्होंने आते साथ ही बताया, जी दुआ बात कर रही हूँ, गाना आपने अच्छा लगाया, बताने के लिए कॉल की, थैंक यू, और ये जा और वो जा। और लास्ट वीक भी आपने कॉल की थी, गाने की वजह से ही कॉल की थी, और बस ये जा और वो जा। या दुआ को गलत फहमी है कि मुझे जल्दी होती है, या मुझे गलत फहमी है कि दुआ को जल्दी होती है, चले जो भी है, कुछ तो है, कुछ होना चाहिए जी। जहां पे कुछ भी ना रहे ना, वहां पे स्यापा होता है। अच्छा, बाज जगह पे गलत फहमी भी होती है, कि कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को तसल्ली देने के लिए किसी की याद को दिल से मिटाने के लिए एक नाकाम सी कोशिश करते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि नहीं, उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, नहीं मैं उसको याद नहीं करती, मैं उसको भूल गई हूं। ऐसा होता है? अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता होगा शायद। फिर मैं ही हूं ना सादा दिल, एक मासूम सा सीधा सादा। ये मासूम लोग और सीधे सादे लोगों की बातें हैं। ये जो आजकल की दुनियादारी में खो गए लोग हैं ना, उनको ये दिल की बातें कहाँ, उनके लिए तो दिल दिल नहीं होता। ऐसी एक धड़कने वाली एक मशीन होती है जो खून को पंप करती है पूरे जिस्म में, और बस इतना सा उसका काम है। दिल के एहसास जज्बात क्या होते हैं और उन एहसास और जज्बात के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो कितने कीमती होते हैं। नहीं जनाब, आजकल की दुनिया में बस जो दिखता है वो बिकता है, और हम रेडियो पे आपको कहां दिखते हैं, तो फिर हमारा मोल कैसे लगेगा? आप तो हमें सुनते हैं। हाय, क्या बनेगा काशिफ तुम्हारा? चले महाराज जनाब, आप जो मर्जी सोचें, लेकिन हम आपको बता दें कि सोनिया आप इमोशनल हो गई। हाय, बचपन की बातें आपको रुला गई, और अब इंसान अपनों के साथ शेयर करता है, इसलिए मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप अपने हैं। तो जनाब, सोनिया की तरह जितने भी लोगों को अपना बचपन बड़ा प्यारा है, उनको ये बताएं कि वो भी वो जो बचपन था, बचपन से 55 और 55 से 155 तक, ये सब उसके दरमियान जितने भी लम्हे, जितने भी दिनों में, जितने भी हफ्तों में, जितने भी सालों में आप जिए हैं, और रब करे आप 155 से ज़्यादा जिए, आमीन। तो ये सब कुछ रब का दिया हुआ, हर दिन, हर रात, हर लम्हा, हर गुफ्तगू और गुफ्तगू की हर बात, ये सब रब के एक निज़ाम का हिस्सा है। तो हर एक चीज़ को, याद को शुक्र के साथ, थैंक यू की फीलिंग के साथ, रब का शुक्र अदा करके उसकी उस फीलिंग को, उस मेमोरी को जब याद करते हैं ना, चाहे वो किसी की जुदाई की मेमोरी हो, किसी की अपनाइयत की मेमोरी हो, किसी का अच्छा टाइम साथ गुजारा हुआ वो यादें हों, चाहे जैसे आपने बताया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपकी बड़ी मेमोरीज थी, तो वो आपका कोई भी जो नखरा था, नाज था, कोई भी फरमाइश थी, उसको टालते नहीं थे आपके पेरेंट्स भी, आपके सब कुछ भी, तो वो सब आपके नाज नखरे उठाते थे, आप लाडली थी अपने घर की। तो ये सब कुछ वो रब की वजह से, रब का दिया हुआ था आपके लिए। अभी जो भी आजमाइशें, इम्तहान या वक्त जिस तरह का भी आपकी ज़िंदगी में है, ये भी रब का दिया हुआ है। और रब तो कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा आपसे लाड प्यार करता है। तो जब उस एक माँ आपको कुछ देती है, कोई एक हग देती है, एक प्यार आपके माथे पर देती है, अपने हाथों से रोटी पका के देती है। मुझे याद है मैंने अपनी वालदा के हाथ की, अब आप मुझे भी इमोशनल करेंगी, मैंने काफ़ी सालों से अपने वालदा को जो मुलाकात नहीं की थी, तो मुझे याद है पाकिस्तान से कोई आ रहा था मेरे घर, मेरी फैमिली में से ही आ रहा था कोई, तो मैंने उनको ख़ास तौर पे, मेरी वालदा ने कहा बेटा क्या चाहिए तुम्हें, हाय ना कर काशिफ कंट्रोल। तो मैंने अपनी वालदा को कहा, मैंने कहा माँ जी अपने हाथ की बना के ना 1.5-2 दर्जन परांठे बना के मुझे भेजे। तो मेरी वालदा बड़ी हैरान हुई, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे, मैंने आपके हाथ की पकी हुई इतने साल हो गए रोटी नहीं खाई,

0: जी जनाब गफूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके साथ आपके भाई सुन रहे हैं हमें, शकूर गफूर भाई। और शकूर भाई, ये खूबसूरत सा गीत आपको अच्छा लगा, आपको हमारी बातें आपके दिल को लगी, पर आपने कहा बात आपने मुकम्मल नहीं की। जनाब बात मुकम्मल करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, फिर उसके बाद माहौल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जनाब मैं बात कर रहा था कि जैसे हमारे साथ रही हमारी प्यारी सी कॉलर हैं सोनिया, उन्होंने बचपन की कुछ यादें शेयर की, तो हमने उनसे उन्होंने ऐसे दिल के तार छेड़े। तो फिर आप हमें जब छेड़ देते हैं, हम छिड़ जाते हैं, आप अपने हैं इसलिए हम आपकी बातों को इग्नोर नहीं करते। तो जनाब काफ़ी साल हो गए जब हमारी मुलाकात अपनी वालदा से नहीं हुई थी। तो फिर मैंने पाकिस्तान से जब लोग आते जाते रहते हैं आपको पता है, तो हमने उनको बोला, उन्होंने पूछा कि बेटा कुछ चीज़ चाहिए हो, तो जैसे माएँ पूछती हैं अपने बच्चों से प्रदेश में। तो मैंने कहा माँ जी आपके हाथ की मैंने रोटी नहीं खाई, बड़ा टाइम हो गया, तो वो आप भेज दें मुझे। तो वो बड़ी हैरान हुई, तो उन्होंने कहा कि सच में, उन्होंने पहले सोचा मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने उनको सीरियसली कहा कि मुझे अपने हाथ के जो है ना वो परांठे बना के ना डेढ़ दो दर्जन भेजें। तो फिर जिस बंदे ने परांठे वो लाने थे उसको जब बताया गया कि, क्योंकि वो भी घर का ही बंदा था, तो जब उसको ये बताया गया तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। तो वो बकायदा जो है ना वो लेके जब परांठे आया तो वो जनाब हैरान रह गया, और उसने जब मुझे परांठे दिए तो उसके बाद जो मेरे जज्बात और जो फीलिंग्स थी वो आज भी मैं याद करता हूँ तो बड़ा अजीब महसूस होता है। तो आपका दर्द, आपकी वो जो फीलिंग्स है वो मैं समझ सकता हूँ। कहना बड़ा आसान होता है लेकिन ख़ुद जब आप उस रास्ते पे कदम रखते हैं, जो प्रदेश में बहुत सारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारे दोस्त हैं बाप बुज़ुर्ग छोटे बड़े भाई हमारे अपनों के लिए प्रदेश काटते हैं आप जब, तो आई कैन फील हिम जनाब आप सबके लिए। तो यकीन कीजिएगा कि वो जब मैंने अपनी वालदा के हाथ के वो जो मुझे वालदा मेरी ने दो दर्जन परांठे बना के भेजे, और आपको जिस रब के कब्ज़े में जान है, जो खालक है मालिक है, आप ये को यकीन करना पड़ेगा कि वो दो दर्जन परांठे मैंने दो हफ्तों में ख़त्म किए, और वो किस तरह से मैंने बचा बचा के खाए कि वो ख़राब ना हो जाएं वो परांठे, और मेरी माँ ने भी इस तरह से बना के वो भेजे थे कि वो ख़राब ना हो, उनकी कुछ कारीगरी और कुछ मेरी मोहब्बत कि मैंने उनको पता नहीं किस किस तरह से फ्रिज में रख के और किस तरह से उनको संभाला, और मैंने वो किस तरह से थोड़े थोड़े करके खाए। और जब पहला परांठा खाया तो मेरे जज्बात क्या थे, माँ के हाथ का वो परांठा इतने सालों बाद, और जब वो आखिरी परांठा रह गया था डेढ़ दो वीक के बाद मुझे याद है, तो वो आखिरी परांठा जब मैं उसका आखिरी नवाला लगा रहा था तो वो क्या एहसास था कि दिल अंदर से कैसे फट रहा था, कैसे चिर रहा था। तो वो अजीब सी फीलिंग है, शायद आप में से बहुत सारे दोस्त समझे हों या ना समझे हों। सोनिया आपको करार आ गया होगा, आपने दुखती रंग पे हाथ रखा, आपने इमोशनल हुई, आप ने जो आपके जो आंसू थे उनकी कीमत हम लगा नहीं सकते हैं, और बरल उनकी कदर में हमने अपनी बात अपना एहसास अपनी फीलिंग दिल खोल के रखा ताकि आपको ये पता लगे कि आपने किसी अजनबी के साथ अपने जज्बात अपने आंसू शेयर नहीं किए, किसी अपने के साथ शेयर किए हैं। तो उसकी इज्जत में उसकी कीमत तो नहीं आपके आंसुओं की, ना ही किसी के भी आंसुओं की कीमत मेरे पास है, लेकिन अपनी दिल की बात अपने फीलिंग्स अपने जज्बात शेयर किए कि आपको लगे कि मैं आपके साथ किस हद तक आपके जज्बात ऐसे साथ के साथ कनेक्ट हूँ और किस दिल से कनेक्ट हूँ, किस नीयत से कनेक्ट हूँ, ताकि मैंने भी अपनी कोई भी ऐसी जो है ना वनरेबल साइड, जो अपनी कमज़ोरी शेयर करते हुए मैंने भी कोई एम्बेरसिंग फील नहीं किया कि मैं किसी गैर के साथ शायद ये बातें कर रहा हूँ, कोई मजाक बनाएगा या सोचेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है। तो बिल्कुल माँ बाप हर एक की कमज़ोरी होते हैं, कमज़ोरियाँ हर इंसान की बहुत सारी होती हैं, किसी की दौलत, किसी की शोहरत, किसी की इज्जत, बहुत सारा नाम पैसा कमज़ोरियाँ होती हैं बहुत सारे लोगों की, पर हमारी कमज़ोरी जनाब प्यार मोहब्बत है जो आप सबसे मिलती है, और उससे भी ऊपर माँ बाप की मोहब्बत है, उनकी ताबेदारी उनकी खिदमत कमज़ोरी है, और उससे भी ऊपर अपने रब के हजूर किस नीयत से हम आपसे अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करते हैं, और आप सब भी करते हैं मुझे पता है, तो वो उससे भी ऊपर है कि रब की बारगाह में हम जो है ना वो शर्मिंदा ना हो, किसी हद तक शर्मिंदा तो होना पड़ेगा, जो हमारे काम है, जो हमारे करतूत हैं, जो हम हक तो अदा नहीं कर पाते हैं रब का, लेकिन किसी हद तक शायद शर्मिंदगी से बच जाए अगर हमारी नीयतें साफ़ हों। तो साफ नीयत के साथ यहाँ बैठते हैं, साफ नीयत के साथ आपसे गुफ्तगू करते हैं, और साफ नीयत के साथ कोशिश हर काम करे। इंसान है, इंसान कभी कभी भटक जाता है, वो इंसान ही क्या, वो तो फरिश्ता हुआ ना जो भटके ना अपनी राह से। और कहते हैं रब को ये बड़ा अंदाज पसंद है कि जब इंसान अपनी राह से, सही राह से भटक के वापस आके तौबा करके उसके सामने माफ़ी मांगता है, तो रब को ये इंसान की जो अदा है ना बड़ी पसंद है। बहरहाल बात बड़ी दूर कहीं निकल गई और पता नहीं क्यों निकल गई, बस ऐसा ही हूँ मैं। और जो भी है, आप अपने हैं तो आपके साथ कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल मिस हो गई, कुछ और दोस्त थे जिनके मैंने ऐसे निगाह डाली तो बहुत सारी कॉल्स मिस हो गई। लेकिन सीमा जी डटी हुई हैं, वो नहीं जनाब, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, अहमद भाई गिव अप कर गए हैं। और बहुत सारे और कॉलर जिन्होंने इंतज़ार किया, इन बातों के दरमियान बहुत सारी कॉल्स आई मुझे, आप सबकी जिनकी कॉल्स मिस होंगे जनाब, उनके आप सबके नाम बड़े ही खलूस से, बड़े ही प्यार मोहब्बत से ये सारे बाकी के गाने, आज के जितने भी गाने होंगे ना, एक आध नहीं, सारे गाने और मेरी सारी बातें और मेरा सारा प्यार और मेरी सारे दिल की दुआएं, ये सब आपके नाम।
1: Sunrise Radio, Trendsetters in Asian Broadcasting. We lead, others follow.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
7: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
7: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
8: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rochow, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। सायरा आपका शुक्रिया, आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। ये गीत जाते जाते आपके नाम करेंगे अहमद भाई, क्या बात है यार। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई जनाब, और सीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी कहा कि आपके बचपन की यादें ताजा हो गई। अच्छा, मुझे कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, अजीब सा लग रहा है, दिल से माजरत अगर मैंने किसी को गमगीन किया। हमारे बहुत सारे दोस्त, वो उन्होंने कहा कि दो दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने खास तौर पे कहा, सीमा है, उन्होंने कहा कि हम बहुत इंजॉय कर रहे थे और एकदम से इमोशनल हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा मैं एहतियात करूँगा, आपको इमोशनल नहीं होने दूंगा। मुझे लगा कि आपको तो हमारी बातें इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, मुझे क्या पता कि आप इतने गौर से सुनते हैं। अहमद भाई कहते हैं जनाब, उन्होंने अब ये बात बड़ी ज़रूरी है बतानी पड़ेगी जैसे हुई। उन्होंने कहा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी साइड पे पार की और बाकायदा उन्होंने गिव अप नहीं किया, लाइनें बिजी उनको मिल रही थी, उन्होंने बहुत बार कॉल की, मुझे पता लग रहा था साथ साथ कॉल्स ड्रॉप हो रही थी, आ रही थी बहुत सारी, और एकदम से आपसे बात हुई। भला आखिर आपने कहा कि आपको हमारी बात बड़ी ज़ोर से हिट हुई आपके दिल पे, और आपको आप इमोशनल हो गए, और आपके जज्बात ऐसे साथ आपकी आवाज़ में महसूस हो रहे थे, और मुझे अच्छा लगा और बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि आप इतने गौर से मेरी बातें सुनते हैं, दोबारा कहूँगा, और बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपने बाकायदा गिला किया, आपने कहा हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे आपके शो को, हमेशा करते हैं, कभी कॉल नहीं की, लेकिन एकदम से हम उतने ही ज़्यादा गमगीन हो गए क्योंकि इतने गौर से आपको सुनते हैं हमेशा। तो बड़ी बड़ी आपकी बात जो है ना वो हिट हुई, और मेरी वालदा जो है, उनकी वालदा जो है ना, वो 3 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, और जितनी भी दोस्तों की माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, रब उनके दर्जात बुलंद करे, और वो ज़रूर आपके लिए रब की बारगाह में सिफारिश करती होंगी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जुदाई माँ की, वो जैसे अहमद भाई की बातों में हमें महसूस हुई, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको 3 घंटे के लिए कोई गम आपके पास ना आए, लेकिन आज पता नहीं क्यों सोनिया जी की वजह से जनाब ये सारा फसाद बरपा हुआ, और हम भी इंसान हैं और दिल रखते हैं। चले ये तो आपको यकीन हुआ, ये कोई AI नहीं है यहाँ पे, कोई ऑटोमेशन पे नहीं लगा हुआ, तो ना ही कोई रोबोट यहाँ पे बैठा हुआ है, आप ही की में से एक इंसान गोश्त पोस्ट का ऐसे साथ जज्बात और ढेर सारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ एक इंसान आपका अपना जिसका नाम काशिफ है। तो चले आपके साथ शेयर की बातें, आइंदा नहीं करेंगे अपने जज्बात आपके साथ शेयर, एहतियात करेंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि आप डाउन फील करें या आपने आपके जो भी गमगीन यादें हैं वो वापस आएं, लेकिन आइंदा हफ्ते वादा करके जाएंगे कि जब भी आएंगे आपके चेहरे पे मुस्कुराहे ही लाएंगे। कोई भी कोई खट्टी मीठी याद अपनी नहीं शेयर करेंगे, मीठी मीठी यादें शेयर करेंगे, ठीक है अहमद भाई, पक्का वादा। ये भाई का भाई से वादा है, एक भाई का अपनी सभी माओं से, बहनों से, और सभी दोस्तों से, सभी बड़ों से, सभी छोटों से वादा होता है, याद रखिएगा। कोशिश रहेगी, कोशिश कि कभी कोई गमगीन मोमेंट ना आए, ठीक है जी, हम जोकर बन के आपको हंसाते रहेंगे, कोशिश रहेगी। चलिए जनाब, आप घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, बछड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची, अपनी यादों में, अपनी बातों में हजूर, और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। कोशिश की कि आपका दिल बहलाया जाए 3 घंटे, आपको बस किसी और का नहीं अपना बनाया जाए, बिल्कुल मेरा, कोशिश की मैंने। अब आप अपनी दुआओं में हमें रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं में रखेंगे उसी रब के हजूर जो नीयतों के हाल सबसे बेहतर जानता है, दिलों के हाल सबसे बेहतर जानता है। हम इंसान दावे तो करते हैं कि दूसरों की नीयत को हम बड़ा अच्छे से समझते हैं, हम बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े चलाक हो गए हैं, दुनियादारी हमें आ गई है, लेकिन दिलदारी किसी किसी को आती है। लेकिन जिसको दिलदारी आती है वो भी ये कहता है, वो लोग भी ये कहते हुए दुनिया से गए, ये सबक छोड़ के गए कि बेशक दिलदारी हमें आती है निभाना, लेकिन फिर भी दिलों के हाल हम नहीं जान पाए अपने दिलदार के।
दिलदार से वफा की, लेकिन दिलदार के दिल की नियत और दिल का हाल नहीं जान पाए। तो इसलिए जनाब, वो रब जो नीतों के हाल दिलों के हाल जानता है, वो मुझे मेरी नियत के मुताबिक आज की जो महफिल सजाने की कोशिश की, उसका इनाम मेरी जिंदगी में दे। और जिस नियत से आप मेरा साथ निभाते रहे, खामोशी से या कॉल करके कोशिश करके कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, या अपनी समातों का ध्यान मेरी तरफ लगाए रखा, अपना पराया जान के, रब आपको आपकी नियत के मुताबिक, बल्कि उससे कई गुना, हजारों लाखों गुना बढ़ के मेरी दुआ है कि रब आपकी जिंदगी में खुशियां और आसानियां पैदा करे। आमीन। अगली मुलाकात तक के लिए जनाब, अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूं आपका ढेर सारा प्यार और दुआएं बटोर के। तो आप अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
4: Sunrise and music. The classic flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rosshome, Manchester, from 12 noon till 9 p.m. on both days, featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas Kawal and Party, Hobarton Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music, radio partner Sunrise Radio.

आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, और ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?